जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया। ऊड़े ऊड़ आवे सह कोसां तिस पाछे बचरे शरिया।

ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाई है, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा अगामे पारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावू संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बलजासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावें मेरे हर भगवंता। तू याद पुरख परंपर करता जी, तुद जीवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे श्रिष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करें ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाऊ सब तुझ ही माहे,
तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा। पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कभी उबाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दैरशा। पूर्ण होए चेत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोरशा निज कर दै करिए। साबैरन को आ संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा जू थी यो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोबद कियो। खट खट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंचरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए सात उनके सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तर तब देह पारा। जाबा करख करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनीला नाद सांब। ताका मूड चारत भेदा, जा को भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतबुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट पिहु शंकरी कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंबव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रशा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करोरण काता। जेस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न आए है। रशा हुए ताहे सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताकि ताप तनक मुहर हो। रेत सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट शास वै सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे,

सगलद्वार को छाड़ के गयो तुहारु द्वार, बांगहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह सेती। मनवजियां वाधाइया राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया शब्द ओ ता गावो हरी केरा। मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नार रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी। सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा, कर ता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा शिव तसला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसिया वाजे। शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वड्याईया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दू तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तंस को हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुदावणी महला पंजवां, थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित राखुर तारू, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारू। सलोक महला पंजवां, तेरा कीता जा तो नाही मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयाई तरस पया मैं राम तोई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरे आ। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सिमरत एक वाहिगुरु जीओ कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ पेखत ही पुनीत होए भेटत जपिए नाओ कबीरा साकत संग ना कीजिए

मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कलयुग पद उत्तम, हर पाइय सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुपत नाम परगाजा, दर्शन साध मिलियो बडभागी, सब किल बिक गए गवांजा, सतगुर शाह

धर्म राए दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच जुड़ मिल बैठी माणयोग साध संगत, सतगुरु साहब जी की मेहर सदका सजे हुए साहबां दे आलमाना दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हो, जुड़ मिल बैठे हो गुरु चरणों के विच। धन्यवाद गुरु सवारे ढाडी जथे का, माणयोग ज्ञानी बलवीर सिंह जी बिहारीपुर वाले ते उन्हां दे सारे जथे का, जथा आप जी दे सन्मुख ढाडी वारां गुर इतिहास आप जी नूं सरबण करवा रहा सी। जथे का धनवाद है। गुरु चरणों के दवान की समाप्ति की अरदास हुई है, सरबत्ते भले की अरदास हुई है। बख्शिश रूप पावन मुख वाह गुरु साहब ने बख्शिया है, जो धन धन गुरु रामदास महाराज तिना की मुबारक रसा तो उच्चारण किया होया मुबारक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दर्ज राग जैतसरी दे विचों ये मुबारक शब्द है जो आप जी ने मुख वाक के रूप सरवण किया है। पातशाह मेहर करन बख्शिया पावन उपदेश साडे जीवन का आधार बने, गुरु चरणा विच अरदास और इहदे नाल ही सजे हुए दवान की समाप्ति संपूर्णता है। तो आओ हुण सुखासन की सेवा नाल दी नाल सोहला बाणी का पाठ होगा। कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, आपने जिन्हें प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। गुरु का लंगर सारी संगत ने छक के जाना जी। तो आओ सुखासन की सेवा नाल दी नाल सोहला बाणी का पाठ होगा। गुरु साहब जी ने जिस स्थानों वाल जाएंगे उपरंत आप सारे ने गुरु चरणा विचों खुशी प्राप्त करने, सबना का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, जैकर कीर्ति आखी है करते का होई बिचारो, तितकर गावो सोहला सिवर सृजनहारो, तुम गावो मेरे निर्भव का सोहला। हौ मारी जित सोहला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार, त्रिदान कीमत ना पवै तिस दाते कवन शुमार, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देह सजने सी सड़ियां जो होवै साहिब सो मेल, घर घर हो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे अवन, राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एक होवे सनेक बाबा, जै कर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ, विसोए चसिया घड़िया पैरा थिती वारी माओ हुआ, सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वे, राग तना श्री महला पहला, गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सागल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भवखंडा तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन, सहस तव गंध चल तमोही, सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो, आनंदनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारे का होए, जात त्रिनाय वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन, हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडावत पुन वड्डा हे रहाओ, साकत हारा साधना जानिया तिने अंतर होमै कंडा हे, ज्यों ज्यों चलें चुभै दुख पावै जमकाल सह सर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टैल की बेला इहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सुहेला
ਆਉਤ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਹਾਰੀ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਸ਼ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਈ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਆਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੀ, ਬਾਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ।

पहले पहले के लिखे ढूंढे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दियो हाड़ी सदवार, जिन मानस के देवते किए करत न लागी वार। महला दूजा, जे सो चंदा उगवै सुर चढ़े हजार, एते चानण हुंदिया।

ला, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सुइना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपा पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ एने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़

दुर्कर्म जनक दुध पाया तो तिन्नी खसम त्याया। इन्ना जनता के बस किछ नाही दुध वेकी जग तो पाया। एक नानो तो मेले एक आप दुध खोया गुरु कृपा ते जानिया। जिसा दुध आ बुझाया सहजे ही सच समाया, सहजे ही सच समाया।

राखो शरनाई, वाहेगुरु जी गौड़ी कबीर जी, बिन सत सती हुए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार, बिन सत सती हुए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार,

ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जासो जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जाकी दृष्ट दुख डेरा टह है, अमृत नाम शीतल मन गह। अनेक भक्त जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन में ऊणे सो पर भया, खिन में ऊणे सो पर भरया, खिन में सूके किने हरया। खिन में नि थावे को दीनो थान, खिन में नि माने को दीनो मान। समय एक रहया पर पूरा, सो जापै जिस सतगुरु पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। भैरो महला पंजवा, मोहे दोहागण आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सुवारी, मिट्यो दुख अर सगल संताप। गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा गृहस्थ आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर पै परगासा। अनहद शब्द अचरज विस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जाको प्रगट पै गोपाल, ताकै दर्शन सदा निहाल। सर्व गुणा ताकै बहुत निदान, जाको सतगुर दियो नाम। जाको भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रपाए, ताकी रेन बिरला को पाए। भैरो महला पंजवा, चितवत पाप नालक आवै। वैसुआ भजत किछ नहि शरम आवै, सारो दिन सह मजूरी करै। हर सिमरन की बेला बज्र सिर परै, माया लग भूलो संसार। आप भुलाया भुला बनहारे, राच रहया बिरथा व्यवहार रहाओ। पेख तो माया रंग बिहाई, गाड़ू बाड़ करें कौडी रंग लाई। अंध व्यवहार बंद मन धावै, करने हारना जी मह आवै। करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया। काम क्रोध लो मन लीना, तड़प मुआ ज्यों जल बिन मीना। जैसे के राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया। भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए। हर का नाम मन बसाए, सा शब्द हृदय मन माहे। जन्म जन्म के किलबिख जाहिं, राम नाम जी को आधार। गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार ले सागर संसार रहाओ। जिनको लिखिया हर इहो निदान, से जन दरगह पावै मान। सूख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले निथावै थाओ। जुगो जुग अंतर एहो तत् सार, हर सिमरन साचा विचार। जिस लड़ लाए लय सो लागै, जन्म जन्म का सोया जागै।

नाम हमारे निश्चल धनी, नाम की महिमा सह में बनी। नाम हमारे पूरा सा हो, नाम हमारे बेपरवाह। नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का स्वाओ। नाम न विसरै संत प्रसाद, नाम लैत अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निद पाई, गुर कृपा ते नाम स्यो बने आई। तनवंते सेई प्रधान, नानक जाके नाम निधान। भैरो महला पंजवा,

आस तेरा तुझ बिन वरण ही को मेरा। कार्य कृपा करहो प्रभ दात तुमर ही ओस्तत करहो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंतु बजावन हारा हम तेरे पेखारी दान देह दातारा। ताओ प्रसाद रंग रस माने घट घट अंतर तुम्हें सुमाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ सात संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते होए दर्द ने बिनास तुमरी मैया ते कमल विगास। हाओ बलिहार जाओ गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करहो ठाकुर प्र मेरे गुण गावे नानक नित तेरे। भैरो महला पंजवा सबते ऊच जाका दरबार सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान कोट अगहा मिटह हर नाम। तिसर नाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिल सोए। रहाओ जाके करतब लखे न जाहे जाका प्रभासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग भगत आराधय अनदन रंग। दे दे तोट नहीं पांडार खिन में थापो थापन हार। जाका हुकुन मेटै कोए सिर पातशाहा साचा सोए। जिसकी ओट तिस की आसा दुख सुख हमरा तिस ही पासा। राख लीनो सब जन काम पड़दा नानक तिस की उस्तत करदा। भैरो महला पंजवा रोवन हारी रोज बनाया बलन वर्तन कौ सनबंध चित आया। बूझ बैराग करे जे कोए जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसारु बिरले कीनो नाम उधार। रहाओ त्रिबद माया रही बे आप जो लपटानो तिस दुख संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए नाम निदान बड़ भागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै स्वांग उतारिये फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे वर्तन हार तैसो परपंच मोह विकार। एक वस्तु जे पावै कोए पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम नानक आया सो परवान। पहरो महला पंजवा संत की निंदा जोनी पवना संत की निंदा रोगी करना। संत की निंदा दुख सुहाम दान दैत निंद को जाम। संत संग कर है जो बाद तिन निंदक नाही किछ साद। रहाओ भगत की निंदा कंध छेदा वै भगत की निंदा नरक पहुंचा वै भगत की निंदा गर्भ में गलै भगत की निंदा रास्ते टलै। निंद की गत कतहु नाहे आप बीज आपे ही खाहे। चोर जार जुआर ते बुरा अण होंदा पार निंदक सिर धराम पार। ब्रह्म के भगत निरबैर सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक भुलाया नानक कीर्तन जाय मिटाया। भैरो महला पंजवा।

ठाब हो, दास अपने को भक्ति लाभ हो। निमाने को प्रभ दे तो मानो, मूढ़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान। सगल पे आन का भाव नसै, जाने अपने कै हर मन वसै।

चल विश्राम। पूर्ण होए सगले काम, दुर्लभ दे आई प्रबान, सफल होए जापो हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सा सिगरास जपो हर हरि, भैरो मोहल्ला पंजवा। सब ते उच्चा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जैस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसै मन आए। सिमरो मना तू साचा सोए, हालत पालत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सृजन हार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बक्षण हार, भगत पाए सदा निस्तार। साचा धन साची वड्याई, गुरपुरे ते निःचल मत पाई, कर कृपा जिस राखण हारा, ताका सगल मिटै अंधियारा।

किया सब दुखं जाय। जत कत पेख हो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुरु चरणा रहाउ। पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सब फल दाता निर्मल सेव। कर गह लीने अपने दास, रामो नाम हृदय दियो निवास। सदा आनंद नाही किछ सोग, दुख दर्द नह व्यापै रोग। सब किछ तेरा तू करण हार, पार ब्रह्म गुरु अगमी अपार। निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी। जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किछु प्रभ ते होए। भैरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने। सर्वन मूर्थ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत। सतगुर दीनो पूरा मंत, सो बड़ भागी जिस नाम प्यार। तिसके संग तरे संसार हाओ, सोई ज्ञानी जे सिमरै एक। सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी। सो पतवंता जे आप पछतानी, सो पतवंता जे आप पछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन त्याया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरणो रिद मह निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसैन रसना चीने। भैरो महला पंजवा।

नित सुख प्रतपाल। अपने दास को दे रख है हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ। हर का जा हर सा प्रीतम अवर न कोय, सार सो माले साचा सोए। मात पिता सुत बंधु न रैण, आदि जुगादु भगत गुण गैण। तिसकी तर प्रभु का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो पुरखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। भैरो महला पंजवा, तय को पौ पड़या स्मृत हर नाम। सगल व्याद मिटी त्रिहो गुण की दास, के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे है, तिन को मिलया पूर्ण धाम। जन का दर्स वंश है दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान। ऐसे संत भेट है बड़भागी, नानक तिन कै सद कुरबान। भैरो महला पंजवा, पंच मंजमी जो पंचन राख, मिथ्या रसना नित उठ पाख। चक्र बनाए करे पाखंड, चोर चोर पचे जैसे त्रै रंड। हर के ना बिना सब झूठ, बिन गुर पूरे मुक्त न पाइये साची। दिर्घ साकत मूठ रहाओ, सोई कुचील कुदरत नहीं जानै। लीपिया ताय न सुच हर मानै, अंतर मैला बाहर नित धोवै। साची दिर्घ अपनी पत खोवै, माया कारण करै अपाओ। कब है ना कालै सीधा पाओ, जिनकी आ तिस चीत न आणै। कूड़ी कूड़े मुखो वो खाणै, जिसनो कर्म करै करतार। सात संग होए तिस व्यवहार, हर नाम भगत सो लागा रंग। कहो नानक तिस जन नहीं भंग। भैरो महला पंजवा, निंदको फिटके संसार। निंद का झूठा व्यवहार, निंद का मैला आचार। दास अपने को रखन हार,

भाव। निंदक कह कोय न मन, निंदक झूठ बोल पछतान, हाथ पछोर है सिर तरण लगाहे, निंदक दई छोड़ नाहे। हर का दास किछ बुरा न मंगै, निंदक लागै दुख संगै, बगुले ज्यों रहया पंख पसार, मुक्ति बोलिया तां कढ़िया विचार। अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सो निहचल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत् विचार। भैरो महला पंजवा, दोए कर जोर करो अरदास, जियो पिंड धन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करने हार, कोट बार जाई बलिहार। साधु धूर पनीत करी मन के बेकार, मिटै प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ। जाके गृह मह सगल निदान, जाकी सेवा पाइय मान, सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भक्तन आधार। घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीवै भगत गुणतास, जाकी सेवना बिरति जाए, मन तन अंतर एक ते आए। गुर उपदेश दया संतोख, नाम निधान निर्मल एहो थोक, कर कृपा लीजै लड़ लाए, चरण कमल नानक नित ते आए। भैरो महला पंजवा, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया। सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ। जाकिया सब कुछ होए, तिसका अमर न मिटै कोए, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सबल मूरत गुर तिसका रूप। जाके अंतर वसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान, बीस विषय जाके मन प्रगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा।

राम। नानक हमें रोग बुरे जह दिखा तह एका वेद ने आपे बख्शाए सब दूं तुरे रहाओ। आपे परखे परखण हाराय बहरों सोला को ना होई जिनको नदरूं पई गुर मिले प्रपाणा सच सोई। पौन पानी बैसंतर रोगी रोगी धरत सो भोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कोटम संजोगी। और रोगी ब्रह्मा बिस्ना सरोद्रांग रोगी सगल संसारा हर पद चीन पै से मुक्ते गुर का शब्द विचारा। और रोगी सात समुंद सन दिया खंड पताल से रोग परे हर के लोक से सा सोहेले सरबी थाई नदर करे। और रोगी खाट दर्शनों पीक तारी नाना हठिया नेका वेद कतेवं करे कहे बपरे नह बूझे एक एका। मिठ रस खाए सो रोग परिजय कंद मूल सुख नाही नाम बिसार चलहे अन मार्ग अंत काल पुछताही।

वार लखमी भओ करै न सकै जाय प्रहलाद जन चरनी लगाए आए सतगुरु नाम निधानंद रड़ाया राजमाल झूठी सौ माया लोभी नर रहे लपटाई हर के ना बिन दरगह मिलै सजाई कह नानक सबको करै इक राया से प्रवान जिन्नी हर सोचत लाया।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया हूँ मैं, तृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन वसया, मनसा मनय सोमाई। हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, आन दिन हारे गुण दीन, जन मांगे गुर कै शब्द औदारे रहाओ। संत जना को जम जोह न सके, रति अंच दुख न लाई, आप तरह सगले को लंतार हैं जो तेरी शरणाई। भगता की पैज रखे तू आपे, एह तेरी बड़याई, जन्म जन्म के किलबिख दो काट है दुबदा रति न राई। हम मूड मुगद किछ बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुद भावै सोई करसी वरना करना जाई। जगत उपाय तू धंधै लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्द सुरत न पाई। मन मुख मरह तिन किछु न सूझै, दुर्मत अज्ञान अंधारा, भवजल पार न पावै, कभी डू मुए बिन गुर सिर भारा। सचै शब्द रते जिन साची, हर प्रभ आप मिलाई, गुर की बाणी शब्द पुछाती, साच रह लिवलाई। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द बिचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे, राम नाम उर तारे। भैरों महला पंजवा, अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, ना बिना जन्म बिरता जाए। तिस सलाही जिस हर धन रास, सो बड़ भागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम

जिस नाम हृदय तिस बड़ परवारा, ना बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निहचल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नाम हीन नाहीं पत वेसाहो। जिस नामो हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नामो बिना भ्रम जो नी मुचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख प्रवान, नाम बिना फिर आवण जान। तिन नाम पाया जिस भयो कृपाल, साध संगत मह लखै गोपाल। आवण जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मलायां। भैरो महला पंजवा, कोट विसन कीने अवतार। कोट ब्रह्मंड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय सुमाय।

आओ। कोट माया जाकै शिव काए, कोट जी जाकी सह जाईं कोट, यो पर जना तेरा अंग, कोट भक्तो वस्तु हर संग। कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठांडा है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाहे। कोट पुरियत है जाकै नाद, कोट अखार चलत विस्माद, कोट सख्त शिव आज्ञाकार, कोट जी धीवै आधार। कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्तारण अवर न दूजा। कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मांस, कोट परलो ओपत निमको माही, कोट गुणा तेरे गणे न जाहे। कोट ज्ञानी कथे ज्ञान, कोट ज्ञानी धरन धरत ध्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मुनीसर मोन मह रहते। अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जामी, जत कत देखो तेरा वासा, नानक गुर कियो परगासा। भैरो महला पंजवा, सतगुर मोको कीनो दान, अमोल रतनो हर दीनो नाम, सहज बनोद चोज अनंता, नानको प्रमिलो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहरों बहरों तिस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उधार, अचिंत हमारे भरे भंडार। अचिंत हमारे कार्ज पूरे, अचिंत हमारे लथे बसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन असंकीता। अचिंत प्रभु हम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हम को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुरदीनो मंत। अचिंत हमारे विनसे बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट डीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो भरमा, अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा। अचिंत हमारा अनहत बाजै, अचिंत हमारा गोविंद गाजै, अचिंत हमारा मन पतियाना, निःचल धनी अचिंत पशाना। अचिंत उपजो सगल बबेका, अचिंत चरि हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तोर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभु ठाकर एक, अचिंत अचिंता सगली।

देही बोलन हार। परम गुर एही कहो रे मुल्ला बांग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज रहाओ।

कहे करे सीख। कहे कबीर हो पया दीवाना, मुस मुस मनुआ सह सो माना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। विगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कते न जाई रहाओ, चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। माथे तिलक हाथ माला बना, लोगन राम खलौना जाना, जौ हो बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाना मोरा रहाओ। तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन है फल सेवा, सतगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दर गै सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना, उल्ट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मह बनंत हमारी। हमरा झगरा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो रहाओ। बुन बुन आप पहराबो, जह नहीं आप ता होएगा वो, पंडित मुला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। हृदय इखलास निरख लमीरा, आप खोज खोज मिला कबीरा, निरतन आदर कोई ना दे, लाख यतन करे ओ चेतना धरे रहाओ। जाओ नतन सरतन क जाए, आगे बैठा पीठ फिराए, जाओ सरदन निरतन क जाए, दिया आदर लिया बोलाए। निरतन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटी जाई, कह कबीर निरतन है सोई, जाके हृदय नाम न ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देई पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लाग विकल पई नहीं बानी, भज लहरे मन सारंग पानी, अब ना भज सों कब पाई, आवै अंत न भजे आ जाई। जो किछ करै सोई अब सार, फिर पछतावो ना पावो पार, सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गौर मिलता के खुले कपाट, बहर न आवे जोनी बाट, एही तेरा अवसर एह तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कै हार, बहो बेद कहो बुकार, पुकार शिव की पुरी वसै बुद्ध सार, तैब तुम मिलकै करो विचार। ईत ऊत की सोजी परै, कौन कर्म मेरा कर कर मरै, निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे वंदया बंद, रब ऊपर गहे राखे आ चंद।

0: हाय हजूर कत दूर बताबो, दंतर बंद हो सुंदर पाप हो रहाओ। काजी सो जो काया विचारें, काया की अग्न ब्रह्म पर जा रहे। सुपना
1: सपने
0: बिंदना
1: बैंदना सही धरना, तिस काजी को जरा न मारना। सो सुरतान जो दुए सरतान ने, बार जाता पीतर आने। गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुल्तान छत्रपत सर तरे। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उच्चरे। मुसलमान का एक खुदा एक कबीर का स्वामी रहा समाए। महला पांचवा, जो पात्र को कहते देव, ताकि व्यर्था हो वैसे। जो पात्र की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। ठाकर हमरा सद बोलंता, सर्व जी को प्रभ दान देता राव। अंतर दियो न जाने अंध, भरम का मोया पावे फंद। ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म नै फल है सेव। जे मृत को चंदन चढ़ावे, उसते कहो कमन फल पावे। जे मृत को बेष्टा में रुलाई, ता मृत का क्या घट जाई। कहत कबीर हो करो पुकार, समझ देख साखत गोवार। दूजे भाई बहुत घर गाल है, राम भगत है सदा सुखाले। जल मैं मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे, भयंगम प्रेंग माया मैं खापे। माया ऐसी मोनी पाई, जेते जीते ते डहकाई रहाओ। पांखी मृग माया मैं राते, साकर माखी अंधक संतापे। तुरे ओष्ट माया में पेला, सिद्ध 84 माया में खेला। जी जती माया के बंदा, नवे नाथ सूरज और चंदा। तपे रखी सर माया में सूता, माया में काल और पांच दूता। स्वान स्याल माया में रहता, बांतर चीते और सिंघाता। मंजार गाडर और लूबराव, बिरख मूर माया में पराव। माया अंतर भीने देव, सागर इंद्र और धरतेव। कहे कबीर जिस उदर तिस माया, कब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की मन सिमरो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माए, तब लग बन फूले फूले ही नाहीं। जब ही श्यार सिंह को काए, फूर रही सगली बन राय। जीतो बूढ़े हार उतरे, गुरप्रसादी पार उतरे। दास कबीर कहे समझाए, केवल राम रहो लिवलाए। सतर सै सलार है जाके, सवा लाख पै कम बरता के। शेख जो कहिए कोट 88, छपन कोट जाके खेल खासी। जो गरीब की को गुज जावे, मजलस दूर महल को पावे। राव 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लख फिरे दीवाना। बाबा आदम किश किश को, बाबा आदम को किश नजर दिखाई। उन भी पेस्त कनेरी पाई, दैल खल हल जाके जर्द रूबानी। छोड़ कतेब करे शैतानी, दुनिया दोष रोस है लोई। अपना किया पावे सोई, तुम ताते हम सदा पिखारी।

सिमरत नाम के लिबिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पर अमृत माहे समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाय रहाओ चूका गुण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त द्वार हर प्रेम भगत मन तन सद राता प्रभु जनाया तब ही जाता कट कर अंतर रवै सोहे तिस्विन बीजो नाही कोय बैर बो छेदे पै परमा प्रभु नात्मा कि तरमा महा कंग तंग ते कंढे लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संजम नाम संभालिया अपना ठाकुर नजर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जय सेवर गोपाल गोसाई प्रभ सो प्रसन्न पै गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उद तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करीजा चरण कमल निम खरीदा तारे गोबिंद जप सब कार्य सारे ऊचे ते ऊचा प्रभ थान हर जन लावा सहज ध्यान दास दासन की बांछो धूर सर्ब कला प्रीतम भरपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा बी साजन परवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवै नानक गुण तास विपास परबती बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मरण जीवन की संकर नासी अपना रंग सहज प्रगासी प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत विचर रहाओ जह आनंद दुख दूर पयाना मन मान के लिवता तुलकाना जो किश हुआ सो तेरा पाना जो ए बूझे सो सहज समाना कहत कबीर किल बिह गए खीना मन पया जग जीवन लीना प्रवती अल्हो एक मसीत बस्त है अवर मुल्ख किस केरा हिंदू मूरत नाम निवासी दोहमा तात ना हेरा अल्लाह राम जीवन तेरी नाई तू कर मेहराम साई रहाओ दखन देश हरीका बासा पच्छम अल्ह मुकामा दिल मै खोज दिल दिल खोजो एही ठोर मुकामा ब्रह्मण ग्यास करे चौबीसा काजी मैं रमजाना ग्यारह मास पास कर राखे एका माहे निदाना कहा उड़ीसे मज्जन किया क्या मसीह सिर नाए दिल में कपट नवाज गुजार आए क्या हज काबे जाए ए ते और तमर जा साजे ए सब रूप तुम्हारे हे कबीर पुंगरा राम अल्ले का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नर वह पर एक की शरणा केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही नेह चै तरना प्रभति अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो श्राप ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर सजी सजन हारा ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारा सब मैं सच्चा एको सोई तिजका किया सब काश होई हुक्म पछाने सो एको जाना बंदा कही है सोई अलोहा लख ना जाई लख्या गुर गुर दीना मीठा कहे कबीर मेरी संका नासी सरबन रंजन डिठा परवती वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना पुकारा वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना बेचारा जो सब मैं एक खुदाए कह तहो तौक मुर्गी मारा मुल्ला कहो न्यायो खुदाई तेरे मन का हा भरम ना जाई रहाओ पकर जियो आन्या दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया जो स्वरूप ना हतला की कहो हलाल क्या किया क्या मसीह उजू पा किया मुंह धोया क्या मसीह सिर लाया जो दिल में कपटन बाज गुजारे क्या हज का बह जाया तू ना पाक पाक नहीं सूझया तिसका मरम ना जानिया कह कबीर भिजते चू चूका दो जग स्यो मन माने आ प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर अदपद आद समाई से समाद अंत नहीं पाया लग रहे सरनाई लेहो आरती हो पुरख नरंजन सतगुरु पूजो भाई ठाढ ब्रह्मा निगम विचार अलख न लख जाई रहाओ तात तेल नाम की अबाती दीपक देहो जयारा जो तलाय जगदीश जगाया पूज बुजन हारा पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी प्रभाती बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन की बिरथा मन ही जाना कह बुझल आगे कहिए अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए बेदी अले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रव्या सरबे ठाई रहाओ मन हाट मन पाठ मन है पासारी मन बस नाना भेदी परमत है संसारी गुर कह शब्द एह मन राता दुबता सहज समानी सब हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत विचारी जो

बुरा है वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिलियो तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कह हों ही पला दारू मेरे वस। ए तो बस्त गोपाल की जब पावा लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लेहो बजाए। नदी नाव संजोग जो बोर न मिल है आए। कबीर सात समुंदह मस करो कलम करो बन राय। बसदा कागद जो करो हर जस लिखन न जाए। कबीर जात जुलाहा क्या कर हिरदह बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मिल चूकै सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय। पांचो लड़के मार कह रह राम ल्यो लाय। कबीर ऐसा को नहीं इह तन देव फूक। अंधा लोग न जानै रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारै चे चढ़ी सुनहो बीर मसान। लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निधान। कबीर मन पंछी पहो उड़ उड़ जाउदा दिस जाए। जो जैसी संगत मिला सो तैसो फल खाए। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर। सोई फिर कह तू भया जाको कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर। ओह चूला ओह चीरिया साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरह चल्यो

अभकर आबकर्ता सुताल पाछ कछु न हुई गा जो सिर पर आवह काल। कबीर ऐसा जंत एक दिखिया जैसी तो ही लाख दिस चंचल बहुगुणा मत ही ना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कौ जमना कर तिस्कार जिन एह जमुआ सिरजिया सो जप

टिका, कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है। जो धरनी मैं खे कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लग गए अंग हर जन ऐसा चाहिए। जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए। जैसा हर ही होए ऊंच पवन कनकमनी, शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी। संत संग गुण गाए कबीर पाटन ते उजर पहला, राम भगत जे ठाए राम स्नेही बाहरा। जमपुर मेरे पाए कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के काट तहां कबीर है मट किया। खोजत मुन जन बाट कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निबह ओड़ हीरा किसका बपरा। पूजन रतन करोड़ कबीरा एक अचमहो देखियो, हीरा हाट बिकाए बणजन हारे बाहरा। कौडी बदल जाए कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। माया कबीर माया तजी त क्या भया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मन वर गल, मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया। शब्द जो बाहया एक, लागत ही पोए मिल गया। परया कलेजे शेक, कबीर साचा सतगुर क्या करह, जो सिखा मैं चूक। आंदे एक ना लागाई, ज्यों बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन सगन खान, छत्रपति की नार। तास पटंतर ना पुज हर

एक अनेक मिल गया, एक समाना एक। कबीर जाकर साधना से भी है, हर की सेवा नाही, ते कर मर हट सारखे, भूत बस मन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल भया, मारे सतगुर बाण। कबीर सतगुर सूर में, बाहया बाण जो एक, लागत ही पुए गिर फरिया, परा करे जे शेक। कबीर

कबीर निर्मल बूंदे आकाश की लीनी भूम मिलाए, अणक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हों जाए था आगे मिलया खुदाए, साई मुझसो लर परया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबा हुए हुए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मार है जोर कर, कहते है जो हलाल दफ्तर दे जब काड है हुएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा निकस मार मोह मोह खाए। कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए, ओ साचे दी बान में पल्ला ना पकड़े कोय। कबीर धरती आर्या कासम दुए तू बरी अबद, खड दर्शन संसे परे आर चौरासी सिधा। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझ को सौंपते क्या लाग मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जात देखो तत सू। कबीर बिकार चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोई न पूरेओ चाले उठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो कर सो सुखिया संसार, इत उत कतह न डोलई जिस राख सृजनहार। कबीर कानी पीड़ ते सतगुर लिए छाए, परा पूर्वली पावनी परगट होई आए। कबीर टाल टोल दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हार भज्यो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर पंकना करंग पिछे उठ तहाय, करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छुडाए। महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर बैसै गाय, धरती पार ना व्यापाई उनको लाहू लाय। महला पंजवा कबीर चावल कारने तुको मोली लाए, संग कुसंगी बैसते ता पूछ धर्म राय। नामा माया माया मोहिया कहत लोचन मीत, काहे छिपो छाय लै राम न लाभो चीत। नामा कहत लोचना मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूं के नाहे, जिन एह रचन रचाया तिस ही माह समाहे। कबीर कीचड़ आटा गिर परिया किशु न आयो हाथ, पीसद पीसद चाबिया सोई निभिया साथ। कबीर मन जाना सब बात जानत ही औगन कर, काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परा। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजा लोगे अजान, तांसो टूटी क्यों बना जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सबार, कारज साडे

बात कबीर के सो कुकिया ना सोइया आसार, रात दिवस के कुक ने कबू के सुना पुकार। कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मै मंता, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संता। कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आगै खोल, कोई आए मिलै गो गाह की लेगो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाली।

सब जग डिठा हंड फरीदा जे तू अगल लतीफ काले लिखना लेख आप नड़े गिरिवान मैं सिर नीवा कर देख फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना न मारे घुम आप नड़े कर जाइया पैर तिना दे चुम फरीदा जा तो खट्टन वेल ता तू रत्ता दुनी स्यो मरग सवाई नी जा पर आता लद्या देख फरीदा जोथिया दाड़ी होई पूर अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर देख फरीदा जेथिया शक्कर होई वेस साई बाजो अपने वेदन कही है किस फरीदा अखी देख पतीनिया सुन सुन रीणे कन साख पकंदी आईया होर करेंदी वन फरीदा काली जिनी नरावया तौली रावे कोए कर साई सो पिरड़ी रंग नवेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया फिर मन लगी जे लोचे सब कोए ए पिरम प्याला खसम खा जय पावे ता दे फरीदा जिन लोहिण जग मोया से लोहिण मैं डिठ कजल रेख न सहिंदिया से पंखी सुए बैठ फरीदा को केंदिया चगेंदिया मत्ती देंदिया नित जो शतान मंजाया से कित फेरे चित फरीदा थियो पवाई दब जे साई लोड़ें सब एक छिजै बियाल ताड़ी है ता साई दे दरवाड़ी है फरीदा खाक न निंदी है काकू जेड़ न कोए जीवन दियां पैरां तलै मोया उपर होए फरीदा जान लभदा ने गया लब दकूड़ा ने किचर झत लंघाई है छप्पर तुटे में फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़ै वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढै फरीदा इनी निक्की जंगी है तल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कुजड़ा सैको हाथी ओम फरीदा राती बड़िया तुक तुक उठन पास तिग तिना दा जीविया जिना विडानी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मिता आयड़िया हेड़ा जले मजीठ ज्यो उपर अंगारा फरीदा लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट हंडे उन कतायला पैदा लोड़े पट फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने चला तो भिजे कंबली रहा तो टुटे ने भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो में जाए मिला तिना सजना

दारू ना जाने सिर भी मिट्टी खाए, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माँ क्यों मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी कड़े सहन गे दुख, रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए।

फरीदा किती जोबन प्रीत बिना सुख गए कुमलाए। फरीदा चिंत कठोला वान दुख बरै विछावन लेफ। ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान। फरीदा जे तन बिरो ना उपजै

कंदुक हाड़ा सिर कड़ा वण कै सार लोहार फरीदा औलोड़ी सो अपना तू लोड़े हंग्यार। फरीदा इक ना आटा अगला इक ना नाही लोना अगे गए सजाप सना चोटा खासी कौन। पास दमामे छत सिर पेरी सडो रड जाए सुथे जी रान में थिए अतीमा गड। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसार दे पी गए कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे। फरीदा खिंतड़ मेखा अगलिया जिंद न खाई मेख वारी आपो अपनी चले मसाइक शेख। फरीदा दो दीवी बलंदिया मलक बैठाया ए गड़ली ताकत लुटिया दीवड़े गया बुझाए। फरीदा वेख कपाहे जे थिया जे सिर थिया तिला का माधे हर काग दे कुन्ने कोयलिया मंदे अमल करेंदिया एस जायत ना। फरीदा कन मसाला सूफ गल दिल का थी गुड़वात बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। फरीदा रत्ती रत न निकले जे तन चीरे कोए जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत न होए। महला तीजा ए तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रत न होए। पै पया तन कीन होए लोभ रत विचों जाए ज्यों बिसंतर धात सुध होए तो हर का भाउ दुरमत मैल गुआए। नानक ते जन सोने जे रत्ते हर रंग लाए। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लभी वथ छप्पड़ ढूंढे क्या होवे चिक्कड़ डुबे हथ। फरीदा नंढी कंध न रावे वड्डी थी मुई आस धन को केंदी गोर में तैसे ना मिली आस। फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछां भी पलियां रेमन गहले बावले माने क्या रलियां। फरीदा कोठे धूकण के चढ़ा फिर नींदड़ी निवार योदे लद्दे गाणवे गए बिलाड़ बिलाड़। फरीदा कोठे

वक्त मसीता उठ फरीदा उजू सा सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानवे सो सिर कप उतार जो सिर साई नानवे सो सिर कीजे काए कुन्ने हेठ जलाई है।

सो लद गए तू अजय ना पतीने होए। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाए, अगे मूल न आवसी दो जग संधि पाए। फरीद महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक बसे रब माए। मंदा किस नू आखिया जां तिस बिन कोई नाए। फरीदा जे दे नाला कप्या जे गल कप्पे चुख, भवन ना इत्थी मामले सहा ना इत्थी दुख। छबन चलन तन से सुनियर बह गए, हेड़े मुती ता से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगई पल्ले सब किश पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आईया संगतां दा धन्नवाद है जो गुरु की गोद विच बह करके सहज पाठ सरवण कर रहे सन। सो बहुत बहुत धन्नवाद सतगुरु जी का भी जिन्होंने सुबह तो लै करके संगतां नूं दर्शन दिदारे दे रहे हैं और संगतां रस माण रही हैं। सो हुण समा है संध्या वेले कीर्तन का। सो हुण भाई साहिब भाई जसविंदर सिंह जी जत्था आप जी नूं कीर्तन नाल जोड़नगे। सो इसे तरह आप प्रेम भावना नाल बैठ के गुरबाणी श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

रहाऊ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया। तुद विण सिद्धि कने ना पाईया, करम मिले नाहीं ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा।

जीवड़ियाप तीवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव मोख।